लताफत हो जो उसके लामसा को कैफ से भर दे, वो एक हुस्न हो जो उसकी बसारत को एक हैरतनाक नजारे में महव कर दे, वो एक तरन्नुम हो जो उसके सामियों को ऐसी लज्जत दे जिससे वो कभी सैर ना हो। जिस खुदा ने रोशनी पैदा की, कैसे मुमकिन है कि उसके अंदर रोशनी ना हो? जिस खुदा ने मजा पैदा किया, कैसे मुमकिन है कि उसमें मजा ना हो? हकीकत यह है कि खुदा तमाम रोशनियों से ज्यादा रोशन है, वो तमाम मजों से ज्यादा मजे वाला है। किसी को खुदा की कुर्बत मिलना ऐसा ही है जैसे कोई शख्स रंगत और खुशबू के अबदी चमनिस्तान में जा बसे, जैसे वो एक पैकरे नूर के पड़ोस में पहुंच जाए। खुदा सारी हिकमतों का खजाना है, इसलिए खुदा को पाना आदमी को इंतहाई बाशऊर बना देता है। खुदा सारे जमीन व आसमान का नूर है, इसलिए खुदा को पाना आदमी की पूरी शख्सियत को रब्बानी नूर से जगमगा देता है। खुदा तमाम ताकतों का सरचश्मा है, इसलिए खुदा को पाना आदमी को इतना ताकतवर बना देता है कि कोई सैलाब उसको गर्क न कर सके और कोई तूफान उसके दरख्त को उखाड़ने वाला साबित ना हो। लोग खुदा से बहुत दूर हैं और समझते हैं कि वो खुदा के करीब खड़े हुए हैं। लोग खुदा के फैजान से नाआशना हैं और समझते हैं कि उन्होंने खुदा के फैजान से अपना खलियान भर रखा है। मोहम्मद कौन है? मेरे नबी हैं। वो सबसे खूबसूरत और हसीन हैं। वो रहते हैं मेरी आंखों में, दिल में, मेरे सीने के अंदर जागुजी हैं। मोहम्मद कौन है? वो मेरी जिंदगी का आसमां भी, मेरे ईमा की ताजा सरजमी है। मोहम्मद कौन है? मैं धुंधले मंजरों में उनको देखूं, जो मौसम साफ हो तब भी वही हैं। मोहम्मद कौन है? वही हैं दाएं बाएं आगे पीछे, मेरे अंदर के बाहर के मकी हैं। मोहम्मद कौन है? मेरे नबी हैं। वो सबसे खूबसूरत और हसीन हैं। मुहर्रमुल हराम अजीमुश्शान महीना है कि जिसको तारीखी एतबार से बड़ी फजीलत और फौकियत हासिल है। खुद लफ्ज मुहर्रम इसकी हुरमत और अजमत की जानिब इशारा कर रहा है। इसी लफ्ज मुहर्रम को अल्लाह ने कुरान में अपने बैतुल्ला से मिला दिया है, इंदा बैतुकल मुहर्रम। बैतुल्ला को बैतुल मुहर्रम भी कहा जाता है। जिस तरह बैतुल्ला काबिल एहतराम है, ये महीना भी काबिल एहतराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह की हुरमत इस तरह बयान फरमाई कि सबसे बेहतरीन रोजे रमजान के बाद अगर हैं तो मुहर्रम के रोजे हैं। रिवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात की तखलीक इस माह में फरमाई, और रिवायात में यह इशारा भी मिलता है कि इसी माह में कायनात की इंतहा भी होना है। इसी माह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी माह में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर रुकने, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट से बाहर आने, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के शिफायाब होने और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरियाए नील को पार कर देने के वाकयात पेश आने का इशारा मिलता है। यही वो महीना है जिसकी 10 तारीख को यहूद रोजा रखा करते थे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 10 मुहर्रम को रोजा रखना और उसकी फजीलत को बयान फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह को शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना फरमाया, चुनाचे जिस शय की निस्बत अल्लाह से हो जाती है उसकी अजमत दुबाला हो जाती है। नए इस्लामी साल का आगाज इसी माह मुकर्रम से होता है, जिसका एहतमाम व इल्तिजाम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों के दौर में बाकायदा हुआ। ये शहादतों का महीना भी है। माह मुहर्रम की पहली तारीख को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों शहीद हुए।
اسی ماہ کی 10 تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی المرتضیٰ کے فرزند حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت حسین